0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: शांति को आवाज रेडियो लुम्बिनी।

नमस्कार। रेडियो लुम्बिनी अपराह्न 5 बजे हालखबर में दिवाकर पंथी को स्वागत छ। यह हालखबर एफएम 96.8 मेगाहर्ज अनलाइन www.radiolumbini.org विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। हालखबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक। विभिन्न कार्यक्रम का साथ गणतंत्र दिवस मनाई गणतंत्र ने राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित र समुन्नत भविष्य का अवसर प्रदान राष्ट्रपति को भनाई। अर्थमंत्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले द्वारा संघीय संसद को संयुक्त सदन में आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट प्रस्तुत करते देश अहिले वृहत आर्थिक सुधार को निर्णायक मोड़ में प्रयोग धारणा। देशभरबाट 14 जना उत्कृष्ट किसान जनै 2 लाख रूपियां सहित पुरस्कृत। अब को कई दिन बदली र वर्षा, तापक्रम घट्दा शीतल महसूस हुने। र कावा महिला भलिबल च्याम्पियनशीप में नेपाल चौथो।

0: क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै ठाडो पारिरहेका छौं तथा सर्वदा
1: बजेट 21 खर्बको बजेट हो यो।